0: ऐसा देश है मेरा बाय लता मंगेशकर एंड उदित नारायण. दिस सॉन्ग इज़ ए ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया, लैंड फिल्ड विद द फ्रेग्रेंस ऑफ इट्स रियल सॉइल, रिचनेस ऑफ ट्रेडिशन एंड वाइब्रेंस ऑफ कलर ऑफ कल्चर. इट टेल्स अस दैट इंडिया इज़ नॉट जस्ट ए कंट्री बट ए फैमिली वेयर एवरी कलर, एवरी फेथ एंड एवरी कल्चर कोएग्जिस्ट इन हार्मनी. On Independence Day, Aisha Desh Mera Hai Mera reminds us of our greatest strength, which is our university, our unit, sorry, which is our unity.
1: City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM, and streaming live to the world.
0: Now for the next song, I have Miles Sor Mera, Mera Tumara. This song is another example of the of our unity in diversity of India. A song featuring multiple artists from different parts of India with lyrics in different Indian languages, showcasing this beauty and strength of diversity. Let's listen to Mile Sur Mera Tumara.